आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी ओरा अपहै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोरा आयो शरण दीन दुख भंजन

की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेंती चापाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम गावो, आप हाथ दै मोहे बचावो, सुखी बसै मोर परवारा, सेवक सिख सबाय करतारा। मोर अच्छा निज करदै करिय, सब बैरण को आसंगरिय, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवरना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन शत्रु हमारे मारिया है, आप हाथ दे मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास नबरिया है, उजो सदा हमारे पछा, श्री अस्तुजू करे हो रक्षा, राख ले हो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाये प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।

सहाई, दुष्ट दोखते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखिन कौ शय करता।

आपत कोई अड़ल सुने गुम जो याह स्वरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निगड़ना दन्नर के रहा हो जो याकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पुण जय अर्ध सहसपुन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पाख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापतम सत शुभम सत्तब जून दोहरा दा जानकर दास पर की जाए कृपा अपार आप हाद राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपाई मैं नाग्रश प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबू न त्याऊं

परत परिया चुन चुन सत्रु हमारे मरिया देख तेग जग में दौ चल्ला राखा मुहे और ना दला तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा

गुण भरे एक गुण नाही अमृत शाढ़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो सरनाई हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगदनी जान जन नानक को हर बख्श लै मेरे स्वामी

स्मरणाय प्रभु सिमरन कज विघ्न लागै प्रभु कै सिमरन अंजन जागै प्रभु कै सिमरन भउ ना व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभु

ललिता प्रभु को सिमरह तिनंद कनेरे प्रभु को सिमरह बस हरनेरे संत कृपा ते अंदन जाग नानक सिमरन पूरै पाग प्रभु के सिमरन कारज पूरै प्रभु के सिमरन कब होना चूरै प्रभु के सिमरन हर गुण बाने प्रभु के सिमरन साई सुमाने प्रभु के सिमरन नैचर्यासन प्रभु के सिमरन कमर विघासन प्रभु के सिमरन अनहा चुनकार सुख पर सुन कांतन पार सिमरह सजन जन को प्रमया नान तिंदन सरणी पाया हर सिमरन कर पग पगटाए हर सिमरन लाग भेद उपाए

जय मात पिता सुतमित न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जय महाप्यान दो जम दला केवल नाम तेरा संग तेरा चलाए।

अनुपुन चन कर्तनतर को नाम कोड पाप परहर गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पाप सुख कनेरे सगल।

हसाय जय प्रताप में शीतल जला सुखदाई पवन पाव कामला जय प्रताप गय सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा।

माया मिथ्या राजो बंतर माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस बसरा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान असुर भगत साध के शरण नानक जप जप जीव हर के चरण

मिथ्या चरण पर उपकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन पर उपकार मिथ्या बास लेत बेकारा बिनबुझे मिथ्या सब पै सफल दे नानक हर नाम ले बिरसे सागत की आरजा साच बिना कह होव सूचा

जाय। गोविंद भजन मन बिरछै सब काम, जे कृपन के नाथ धाम, तन तन ते जन, जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन प्रीत मुख गंड लावत, जानन हा प्रभु परबीन, बाहर फेक न काहू पीन।

बृहस्पति जय प्रसाद सति अमृत का है ठाकर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लाभ है तिसको सिमर परम गत पाव है जय प्रसाद प्रसाद सुख मंदर तिस त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमर तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई ध्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग तवर लुभावै जय प्रसाद

प्रसाद संपूर्ण फल है। जय प्रसाद परम गत पाप है, जय प्रसाद सुसाई संभाव है। सह प्रभ त्याग वर कतला को गुरु प्रसाद नानक मन जाग हो। जय प्रसाद

जतन उत्साह के संग एक ऊपर जतन साध के महिमा वर्ण कौन पर आने नानक साध के शोभा ब्रह्मा सुमाने स्वर्ग संग गोचर मिलाए स्वर्ग संग सदा पर फुलाए साध के संगा भय बचपन चा सा

समुद्र साधु सुन रस्वाय साधु का संग सुन वर नाम साधु संग अर्क गुणगाव साधु का संग नमंत विसराय साधु संग सर्वपर निस्तराय साधु का संग लगे प्रमिठा साधु कह संकट का डिठा।

ब्रह्मज्ञाने सुजय निवास नानी ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता

ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी

नानक तस मिले जिस लिखिया तुर करम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सत राम दास आत्म राम सुसनद्री आया दास दुसंतर पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास हर का परवान अपने दास को आप कृपा करे ते दास को सब सो जी पर

सगल समग्री अपने सुतारे नान जिस जिस पावे तिस तिसने सारे कई कोट राज ताम सात कई कोट भेद प्राण सिमरतर सात कई कोट के रत्न सुमंद कई कोट नाना प्रकार जनता कई कोट की अचर दिव्य कई कोट ग्रीमर स्वर्ण दिव्य कई कोट दकिंदर पैसा कई कोट भूत प्रे सुकर मेरे गाय सब ते नेहरा सब ते दूर नानक पल अवत्रहा परपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मे जी में मरे कई कोट बोझोनी फिरे कई कोट बैठ ती कई कोट काला था कपा है कई कोट की अतनवंद कई कोट माया में चंद कह जय जय प्रणा थे ते रखे नाने सबके प्रभ के हाथ कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिले लागी कई कोट प्रभ को खो जनते आत्म पार ब्रह्म हंत कई कोट दर्शन प्रभ प्या तिनको मिलो प्रभा विनाद कई कोट मांगे सात संग पार तिल लागा रंग जिनको है आप सो प्रसन्न नान तेजन सदा तन तन कई कोट खानी अर खंड कई कोट अकाल ब्रह्मंड कई कोट हो अवतार कई जुगत के नव विस्तार कई बार पसरे हो पसार सदा सदा एक अहंकार कई कोट किन्ने बहु पा प्रभ ते ब्रह्मा समाता कांत न जाने को आपे आप नानी प्रभ सोए कई कोट पार भ्रम के दातन अवता तम प्रकाश कई कोट तत् कवित सुधा निहर को नेत्र कई कोट नाम रस पिमे अमृ पे सरस्वती जी में कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुमाव अपने जन को साथ साथ सुमारे नानक को परमेश्वर के प्यारे सुरो करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही को नानक तुझ बल हर न जल तल में यल सोय परी कर्ण करावन करण जो जो तुझ पाप है सोई हो किन में ताप तापन आरा अंतनिक पारा बारा हुक्म तार दर रहा हुक्म उपजय हुक्म सुमावै

अवतार अस्पति संत के दुखन हर दट संत के दुखन जम तेने छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सो बाते हीन

जोन किरमाए संतन का दुखन ते सुनामे जलाय संग दुखन सब को जलाय संग दुखन ते सब जाय संग दुखन इचन चाय सं दुख के खाता को नाय नान सुन पावे ता विगत पाए संत गण दग मात ताई संत गण दग कंठ कन पाए संत गण दग महत यारा संत गण दग परमेश्वर मारा संत गण दग राज ते हिन संत गण दग दुख यार दीन संत के नंद को सर्व रोग संत के नंद को सदा पे जोग संत के निंदा दुख में दुख नान संत पावे ता उसका भी मोख संत का दुख सदा पे संत का दुख किसे का नहीं मेत संत का दुख को डर लागे संत का दुख को सब जागे संत का दुख में अहंकार संत का दुख सदा पे कार संत का दुख जन्म मरा संत के दुख न सूते डरा संत का दुख को नहीं ठा नान संत पावे ता लय मिलाए संत का दुखिया बीते टूटा संत का दुखी कित काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत के द्रव संत का दुखी अंतर तथा ज्यों सा बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ खिचना या परमिदा पे काय संत के दुखी का बना राखन हार नान संत पवित्र ले बार संत का दुखी बिल लाए ज्यों जल बिन मछली तर फटाए संत का दुखी भुखा नहीं रहते ज्यों पावे के धनी त्रापे संत का दुखी जुटे अकेला ज्यो भुआड़ दिल के तुम्हें दुहेला संत का दुखी तरम तेरा संत का दुखी तम इत्या कैद कीर्तन नंद का दुरी पया नाना ज्योति पावे सो ही थी आ संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत का दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सुधर सका ये संत का दुखी न मरे ना जीवाइए संत का दुखी के पूजन आशा संत का दुखी चरण आशा संत का दुखन तुस्ता कोई जैसा पावे तैसा कोय पया कीर्तन मिट्टे कोई नान जाना सच्चा सोय साफ कर तिसके करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार है प्रभु के उस करो दिन रात सत्या सागर सब कुछ वर्त सिखा किया जैसा करे तैसा कहती है अपना खिलाफ करने हर दूसरे कौन का है विचार जैसन कृपा करे तैसा अपन नाम देव पाकि नानक जन

बृहस्पति मानव के टेबल से संविधान देवन को एक भगवान जिसका दिया रहे गाय बोन सुना लाके आए मारे रखे को आमान के सुना यह तिका हुक्म हो चुको है तिका नाम रंग खंड पर सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नान विघ्न ढाके कोई उत्तमर में कर्णकार कर्म मेरे सदविहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुला कर ला जियो नैनो पेगटा कुरका रंग सासंग में ससाप संग चन चलो मार गोविंद मिठे पाप जपियार बिंद कार हर कर्म कर मन हर सरता

धर्म के सदा सदा जान ते सुखी। एको एक एक पहचान ओत की ओसोती जान नाम संजित कमन मान नाम त्रेन्द्र रंजन जान गुर प्रसाद अपन आप सुजी जान तस्नाम बुझे सा संग राजा कैत सर्व रोग ते ओहो हर जन रहत अंदर कीर्तन केवल बख्यान के समय सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा की कटिए की भाषा पार्वों के जिस मन भूख नान तिथ न लाग दुख जिसको हर परमच त्यावे सो सं सुला नहीं डुलावे जिस पर अपना कृपा करे सो सवे को कैसे डरा जैसा सात साध छाया अपने कार्य में आप समय सोदत सोदत सोदत से जय गुरु प्रसाद तब सब बुझ्या जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई असथूल नक जन्म नक सुमरय आपने चलता पे ही कर आवन जाम दुष्ठन दुष्ट आज्ञा करी तारी सब सृष्टा पे आप सगर में आप अनक जुगत रच थाप थाप अविनाशी नाई किस कारण तारण तार ब्रह्मांड लाख पे प्रभु प्रताप आप जो पाता नानक जाप जिन प्रभु जाता सब स्वभावंत सगल संसार उदर तनमंत प्रभु के सग सगल उदाहरण प्रभु के सग दुख विचरण आपे में ले कृपाल गुरु का सब जप निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ पाके नाम जो पावे विश्राम नानक तिन पुरुख उत्तम करमान जो कुछ करा सो

जिस्तेव जात समाय समायो सुख निदान ओनु मन आपस को अवधि नो मान नान प्रभ जने को जान सुलोक सर्व कला पर पूर प्रभिर था जान हारो जा कैसे मनु उद्रिय नान तुझ बलिहार अस्पति टूट

तदबिंदु सुरवाना गजा भजन सदा सदा निराणी सब ते निर्मले करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रति तिजने अभयर प्रचित भगत भगत सुनियत लोए जाके हृदय कोय सच करणी सच ताकी रहत सच हृदय सत मुख कहत सच ज सचा आकार सच वर्ते सचा प्रसार पाव सगिर जाता नान सुजन सच सुमत श्रोक रूप नारेख नारंग रघुंत प्रपिन्न तिस बधाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न स्पति अवनाश ब्राह्मण में राख मान केतु प्रत्य आग सबरे न कुछ को सर निरंतर को सोए आपे बिना आपे दाना गैर गमीर गैर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा दान दयाल।

नेत्र और तिलका मंत्र न जाने और आनंद रूप मंगल सजा का सर्व तो उसने करता के राज में राजयोग में जोगिता मत विसर्ग में भोगित्याये त्याये भक्त सुपाय नाने तुरका के नियंत्रण पाया जाके लीला की मितना है सकल देवार अवगाय पिता क्या जन्म के जाने पर सकल पर अपने सुमत ज्ञान त्याम जन दे जन दास नाम त्या में स्वय ते गुण में जाको परमाए जन्म रे प्रया वेदाय उतनी तित कह स्थान जा स्वजन वेता था नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे कराय करंग नाना बेदकिनो बेताल प्रावना से एक अंकार नाना चल कर अखिन माए पूर्ण पूर्ण सब उठाए नाना मित कर बंत बनाई अपने कीमत आपे पाए सब गुण तिसके सब तिसके ठाउन जब जब जीवे नान करनाओ नाम के तारे सकला चंद नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सुमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सकला काल नाम के तारे प्रिय सपावन नाम के समुद्र सुन सर्व कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद मैं सो जन गत पाए रूप साजा का सजा स्थान पुरुष केवल प्रधान कर तो सत सजा के बाणी सत पुरुष महेश वाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सात्य उत्पाद सत करने निर्मल निर्मल जिस बजाय तिसे सब पले सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नान गुर ते पाई सत वजन साधु उपदेश सत जन जा कर हृदय प्रवेश सत भुज जोय नाम जब तक गत हो आप सद किया सब सत आप जाने अपनी मित गत जिसके सिर सु करने हार वन बुझ कर विचार करते कि मित्र जाने किया नाने जो तु पावे सो वर्ती आप बिस्मर बिस्म पै समाजन बुझा ते साहब स्वाद प्रभु के रंग राज जन राय गुरु के भजन विदार्थ लय दत्त दो काट नार जा के संग तेरा संसार जन का सेव सोड बागी जन के संग एक लेव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गौर प्रसाद नानक फल पावे सुरोग आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अस्पति चरण सत सब प्रसनार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सब एक नार नाम सत सत्यावनार आप सत सत सवतारी आप गुणकारी सब सत सब प्रभक्ता सुर सत सत सुनता भुजन को सत सब हो नानक सत सब प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन मान्या कर्ण ग्राम जन मोहन पछाण्या जा कै हृदय विश्वास प्रभाया तत्कंत मन प्रगटाया पै ते निरपो है बसाना जिते बजे तुम्हारे समाना बस तुम्हारे बस गड़ाई तक वर्ण करना जाय बुझे बुझनार बाब एक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा बुझारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत है ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत ठाकुर का सेव जन संग प्रभु का सेव नाम के रंग सेवक प्रपालनार सेविकीरा केन्द्रंकारा सो सेवक जिस दया प्रवता रहे नानक सो सेवक सास सास सुमारे अपने जन का प्रदा ठाके अपने सेवक के सर पर रखे अपने दा को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेव के आपद रखे ताकि कदम को न रखे प्रो का सेव को न बचे प्रो का सेव कोई देव जो प्रो अपनी सेवा लाया नानक सो सेव दया बुटाया निकी के रे में कद रखे बसों करे लश्कर कोट लाके जिसका सास ने काटता अवता को रखे देकर हाथ मान जतन कर दो पात के कर्तव्य थे जात मार न रखे व न कोई सर्व दिया कर रखा सोई का है सोच करे रे प्राण जब नानक प्रभ अलख विंडाणी बार बार बार प्रभु जप्य पी अमृत मन तंत्र पिय नाम रतन जय गुरु उपाय चवनाय दत्ता है नाम तन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम कसंग नाम रत जो जंत्र तन मंत्र नाम नाम सुमन उठ बैठ चोत नाम कव नान जन के सदकाम बोलो जय जय बाजरा प्रभु अपने जन की नीता करा बता तुम का चाह प्रभु अपने स्वर सुमाय जो आओ वसु जाने प्रभु ने कहो कुम छाने दिखी में कौन खाने दिखा गुण का न जाने वाट प्रभु अब दूर है कहो नान सोई जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लय मंत ने अपना तिन जन दे जिन जाने अपना प्रभु चाहता सोच सर्व तो का दाता तिसके शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे और सियानम सगली चारते जन की तुझे बलाग अमर जान हुए तेरा नानक तिस जन के पूज हो सत पैरा सुरु सत पुरुष जन जाने सतगुर तिसका नाम तिसके संग सिख उधर नानक हर गुण गावस्पति सतगुर सिख करे प्रतिपाल सेवक गुरु सदा दयाल सिख गुर दुर्मत मल हिरे गुरु बचनी हर नाम उचर सतगुर सिख बंधन काटे गुरु का सिख कर दे हटे सतगुर सिख नाम तंदे गुरु का सिख उठपा गई है सतगुर से काल पल सवार नानक सतगुरु से को जी नाल सवार गुरु के ग्रह से जो रहे गुरु की आज्ञा मन में सह आपस को कर का छना जनावे हरा नाम हृदय सत्यावे

ओ द्रव्य रूप रंग प्रगा साधक संग रच रचना अपने कलतारी अनक नानक बलिहारी श्लोक साधन चाले बिन भजन में क्या सगले चार हर नाम कमावना नानक तन सारस्पति संत जना मेरे करो विचार एक सिमर नाम यदार वर पासा में दिवसार चरण कमर दमाय रुतार करण कारण सो प्रथम रात दिन कर गहो नाम हर वाच एव तन संत भगवंत संजना कान ब्रह्मंत एकास राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाय जिस तन को चार कुंट उड़ता वह सो तन सेवा ते पाव जिस से कुन दुवाच मीत सो साधु संग परीत जिस सभा को करा परि करने सा सभा बदर के सन यन को पावे रोग न जाय रोग मिट हरि को दलाय सर्व धन मेरे नाम धन जपना ने दर के प्रवान मन भर बो दुवर के नाय दर तप ते आवे ता को बिघन लागे को जा।

जम उपास सीताद विचार का जन साधा जन्म रे सो का त्यो कहता आवागन बेटे प्रभु से आप त्याग जन कर देवे और रत्न जन्म का धार हर अर्थ मेरे प्राण धार अनेक भावने जुट नारे सिमर सात वेद विचार हर की भक्त करो मन लाए मन मन सन नानी बल पाए संग न चार तेरे तन तो क्या लपटावे मूर्ख मना सत्यमित कोटाम यार बनता इनते कहो तुम कवन सुना था राजरंग माया विचार इनते कहो कवन छुटकारा सचिरा सारी छुटा डम छोटवा सारी जिन

फिर फिर प्रभ आया पर सरनाए नानक के प्रभ बेनते अपने भगत लाए जाचक जन जाच प्रभ दान कर कृपा देव और नाम साधना की मंग तुर पार परमेश श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गाव सा प्रभु तुम्हें दया भव चरण कमल सोला के प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत।

पर परे प्रेम रस रंग उपजाऊ कै संग परा शरणान सब त्यागंत प्रगातान दल लाग बड़ पागे जपया प्रभ सोए नानक नाम रतय सुख होय शिव की मन सब पूरी पे सत गुर तय निर्मल मत लई जन को प्रभ होय दयाल शिव किनो सदा निहाल बंदर काट मुझ जन पिया जनम मरण दुख भ्रम गया यजमुनि सरदासा बोरे राम रया सत्संग जुरे जित का सतन लिया मिलाए नानी भक्ति नाम समाये शोक मिश्र दे काल न बन शोक मिश्र दे किया दान शोक मिश्र दे सब के छ दिया शोक मिश्र दे जीवन दिया शोक मिश्र दे घर में राखे गुरु प्रसाद को बिरला राखे शोक मिश्र दे व्यक्ति काट जन्म जन्म का टूटा गंड गौरपुर तत एह बुझाया।

पर जापो अस्पति जाब कार्य कचना दुचेता पापन तब गत होता जब तारी अपन सुन सुमात बैर ब्रोके संग कमात जब इसका वरण चेहन जब तब हरख सोग को किस व्यापत जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कांग सोवत पारम आपन खेल आवर तेजा नानक ने अन्न दूजा जब उस प्रभु केवल तनी तब बंद मुकत को किस को गनी जावे कैरा कम व्यापार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण पर सहाय तब सब सिद्ध को कित धाय जब आप अपने जो तर तब कवन निडर कवन कत डर अपने चल तब करने हार नानक ठाकुर कम व्यापार अपने आशे सुखे अपने आसन तब जन्म मन को कहा बिन आसन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की द्रास कहो के सोए जब अभिज्ञा गोचर प्रविका तब चेतर गोचर पोचर लेखा जब ना निरंजन गोचर का तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप या चरदा नानक अपन रूप आप ही हो परदा जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तब निर्मल को क्या होता जय निरंजन रंग का निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छदर लगत को कीत।

जल पे सुमाया उहां किसे व्याप जमाया आपस को आपया ते सगुण का नाही प्रवेद एक है एक एक भगवंता ते कौन है जिन किस लागे चिंता जय अपने आप आप दियारा ते कौन कथा कुन सुनने आरा भव बंतु ते उच्चा नानक आपस को आप पहुंचा जय अवरच प्रपंचाकार तगुण में किन्नो विस्तार पापंता पैका कौ नरक कौ स्वर्ग वंशावन

पसरा पसार संत प्रताप दो पाका आपे तनी उनके शोभा उन्हों बनी आपे को तो करे आनंद चो जो आपे रस रस भोजन जोग।

दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा से परवान अंतर जामे पुरख प्रधान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर

धरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबले आकाश सुनया दीप लो पाताल।

अहंकार, असंख जाप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तप ताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहै उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लेवलाय तार।

तुद भावे साई भली कर तुम सदा सलामत निंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सर पार हुए अखरी नाम अखरी सालाह

अंब खाए। आपे जाने आपे दे, आखे से पेके के, जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पात साही पात साहु। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल व्यापारी अमुल पंडहर।

कहे ना सकत केह। अचाल मूर्त अनपहो प्रकाश अमतोज कहिजय। कोड इंद्र इंद्रान साहे साहान गनिजय। तिरपह महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिन कहत। तुवै सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत।

पहन काम आतदत प्रचान मेत गाते अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाडय अंडड बाडय चाचरी शांत व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग नामे कामे प्रियंग प्रयासंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वास

मंग अजाय ना चित्तर है ना मित्र परे है पवित्र है पृथ्वी से अदिश्य अदृश्य अकृश्य भगवती शांत वे प्रसाद कहते के अछ अज देसे के अभेज भेसे के अगंज करमे के अभंज भरमे के अभेज

सर्वमंगलिह के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गावन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता

कली में के परमंग फही में के आकल अला में के सहब कला में के हुसन वजू है तुम आमल रुजू है हमेशा सलाम सलीख तुम दाम है।

पृथ्वी प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चारि छंद अभंग है, नांग है, अपेख है, अलेख है,

पात निरसाकं श्री कह अमितोमी कह सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमें सल सलाम है।

है, क्या चलंग नाग है, कै मितो भांग है, मत प्रशांत वै प्रसाद, मन मन प्रणाम, गुण गण मुदाम, हर बर गंज, हर नर प्रभांज, अन गण प्रणाम, मन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमांड, अन पवनास, मन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम, जल थल मुदाम, अन सिंह अंग आसने भांग उपमा पार, गत मिति उदार, जल थल अमांड, दिस विस अभांड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अन पाव नास, त्रित तार तो रास, आ जान बाहु एक सदा हो, अंकार आद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल।

ब्रह्मंड से है, कालखंड से है, परते पर है, करना कर है, जपा जप है, थप्पा थप है, कृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अजबा कृत है, अमृता अमृत है, नर नायक है, खल कायक है, विश्वम्पर है, करुणालय है,

एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पांथ साही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लही त्याय। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरऊ श्री हर राय। श्री हरे कृष्ण त्याई जिह जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनौ निदयावे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी।

सर्वात्मा बला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पही अकाल की तवै चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है

हर कथा हर जस साध संगत स्यों एक मुहत ना एहो मन लायो बिगस्यो पेख रंग को संभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल स्यों पाऊ न किनो नै सत पुरख मनायो तावत को ताव है बहु पाती ज्यों तिरली बलद परमायो नाम दान इस नान न कियो एक निम

सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी, सगल रेण हुए रही है, साधु संगत हुए प्राप्त, ता प्रभ अपना लहिया। सदा सदा हम शोहरे तुमरे, तू प्रभ हमरो मीरा, नानक बारक तुम मात पिता, मुख नाम तुम

अवर कछु मेरे संग ना चाले, मिले किरपा गुण गाम रहाओ। राज माल अनेक भोग रस, सगल तरबर की शाम। ताए ताए बहु बिद को तावे, सगल निरार्थ काम। बिन गोबिंद अवर जे चाहो, जिसे

मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी रहाओ। अब न सूझे दूजी ठहर, हार परयो तो द्वारी। लेखै छोड़ अलेखै छूट है, हम निर्गुण लेहो उभारी। सद बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना देह अधारी। नानक दास संत पाछे परयो, राख लेहो एह बारी। टोडी महला पंजमा, रसना गुण गोपाल निद गायण। शांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायन रहाओ। जो मांगे सुई सुई पाव है, सेव हर के चरण रसायण। जन्म मरण दूहों ते छूट है, पवजल जगत तरायण। खोजत खोजत तत बिचार्यो, दास गोविंद परायण। अब नासी खेम चाह

जोर सकत नानक इच नाही, प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजमा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता, औखद हर को।

संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टी

अमरता अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह उप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। टूडी महला पंजमा, हमारे एक है हरि हरि, आन अवर सिजान न करी रहाओ, बड़े पागुर अपना पायो, गुर मोको हर नाम दिरडायो, हर हर जाप ताप बरतने मा, हर हर त्याय कुशल सब खेमा, चार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब कुछ तिसके ग्रह में आया। टोडी महला पंजमा, घर चौथा धुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूड़ो मन हर रंग लोड़ै, गाली हर निहु न होए रहाओ, हो टुंडेंदी दर्शन कारण, बीथी बीथी पेखा, गुरमिल परम गवाया है, ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो, लेख लिखियो तुर माथै, ए बिद नानक हर नैण आलोए। टोडी महला पंजमा, गर्भ गहिलड़ो मूडो हियो रे, हियो महाराज री मायो, बिहिर न्याय मोह फाक्यो

संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर किरपा भेटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास टोडी महला पंजमा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम पूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पै बिस्मादा आनना बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर

गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ, छोड़ सियानप बहुत चतुराई, दोए कर जोड़ साध मग चल, सिमर स्वामी अंतर जामी, मानख देह का एहो उत्तम फल, वेद बख्यान करत साधु जन, पागहीन समझत नहीं खल, प्रेम भगत राचे जन नानक, हर सिमरन दहन पै मल टोडी महला पंजमा, माई चरण गुर मीठे बड़े पाग देव परमेसर, कोट फला दर्शन गुर डीठे रहाओ, गुण गावत उचित अबनासी, काम क्रोध बिन से मद टीठे, अस्थिर पय साच रंग राते, जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजमा, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद होवे

कर गह काढ़ लियो जन अपना बिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुड़ न संकट द्वारा नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा। टोडी महला पंजमा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भुगवै हर सिमरत बिन से सब दुख रहाओ कोट जन्म के किल विखनासै सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण पई आसा दर्शन पेखत दर्शन पेटत उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न तुख। टोडी महला पंजमा हर हर चरण हृदय उतारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत विचारे गुण गावत अतुल।

बिनो करी जे जाना दूर प्रभ बनासी रहा भरपूर जा नानके गावे देखा दूर सुही महला पंजमा।

आस प्यासी पिर को लोड़ी, कवन कहा गुण कंत प्यारी, सुगर्थ रूप दयाल मरारी, रहो सत सिंगार पौ पंजन, सत सिंगार पौ अंजन पाया, अमृत नामत बोल मुखाया, कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा पिर कर आवे, गुण कामन करे कंत रिझाया, बस कर लीना गुर परम चकाया।

पेख दिखावी सच ना कमावे, कह तू महली निकट न आवी। तीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुखराता। कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय, कुचल कठोरे कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वडियाई, तुम सुखदाते पुरख सभाई। रहो दूजा सुही महला पंजमा। बुरे

अज्ञान गवारा बहुर बहुर लिपटे हो जंजारा राहो बिखे नादे करन सुन पीना हर जस सुन ते आलस मन कीना दिष्ट नहीं रे पेख ते अंधे छोड़ जाए झूठे सब तंदे राहो कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोए साध संग दी जय तो किश पाईया जो हो या रहना जिसे बजाए तिस नाम लेना राहो सुही महला पंजमा कर मैं ठाकर नदर न आवै गल मैं पाहन लै लटकावै पर मैं भूला साकत फिरता नीर बरोले खप खप मरता रहूं।

कहो। त्यागी तनादा खारे संगा उहा संत करे हर रंगा तै मर न जीवन सोग न हरखा साचे नाम की अमृत बरखा गोज कथाई गुर ते जानी नानक बोले हर हर बाणी। सुही महला पंजवा जाके दर्श पाप कोट उतारी पेट संगे पव जल तारी ओए साजन ओए मीत प्यारी जो हमको हर नाम चितारी। रहो जाका शब्द सुनत सुख सारी जाकी टैल जमदूत बता बदारी जाकी तीर्थ इस मने सदारी ताके सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारी सरन नानक तिन सद बलहारी। सुही महला पंजमा रह न पावे सुर नर देवा ऊठ सदारे करमन जन सेवा जीवत भेख जिन हर हर त्याया साध संग तिन दर्शन पाया। रहो बादशाह सा वपारी मरना जो दिसे सो कल हे खरना कूड़े मोह लप लपटाना छोड़ जलिया ता फिर पछताना। किरपा निदान नानक करदात नाम जपी नाम तेरा जपी दिन रात। सुही महला पंजवा कट कट अंतर तुम्हें बसारी सगल समग्री सूत तुम्हारी तू प्रीतम तू प्राण अधारी तुम ही पेक पेक मन बिगसारी। रहो अनक जोन परम परम परम हारी ओट गही अब साध संगारी अगमा गोचर अलखा पारी नानक सिमरे दिन रह नारी। सुही महला पंजवा कवन काज माया वड्याई जा गोबिन सत बार नकाई ए सुपना सोवत नहीं जाने आचेत व्यवस्था मह लिपटाने। रहो महामोह मोहियो गवारा पेखत पेखत ऊट सदारा ऊचते ऊचा जा का दरबारा कई जंत बिना ही उपारा दूसर हो वा ना कोई होए जप नानक प्रभ एको सोए। सुही महला पंजमा सिमर सिमर ताको हो जीवा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा सोहा।

0: मन आनंदा गुण अपार प्रभ परमानंदा जाके सिमरन कछु भाव न व्यापै सदा सदा नानक हर जापै सुही महला पंजवा गुर कै बचन रे दे त्यान धारी रसना जप जप्यो बनवारी सफल मूर्त दर्शन बलहारी चरण कमल मन प्राण आधारी रहो साध संग जन मरन निवारी अमृत कथा सुन करन आधारी काम क्रोध लो मोह तजारी दृढ़ नाम दान इशनान सुचारी कहो नानके तत बिचारी राम नाम जप पार उतारी सुही महला पंजमा लोभ मोह मगन अपराधी करन हार की सेव न सादी पतित पावन प्रभ नाम तुम्हारी राख लियो मोहे निर्गुणयारी रहो तू दाता प्रभ अंतर जामी काची दे मन खे अभिमानी स्वाद बाद ई रखे मन माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक सरनाया सुही महला पंजमा
1: वेखत चाखत कहियत अंदा सुनियत सुनिए नाही नेकड बास्ट कहो जाने दूरे पापी पाप कमाही जो कुछ कार जत छुटे पुराणी हर हर नाम जप अमृत बाणी रहो कोर मह सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु न जाता राख है पोच माटी का पांडा आतक चील मिले जम डांडा

गुर प्रसाद कने फिर ले जाता जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल बसे मेरे चीता नानक करे अरदास विसरनाई पूरन गुणतास सूही महला पंजवा मीत साजन सतबंध भाई जत कद पेख्यो हार संग सहाई जात मेरी पत मेरी तन हर नाम सुख सहज आनंद विश्राम रहो पार ब्रह्म जप पह सनाहा कोट आवहद तिस बेद नाह हर चरण कमल

महादुतर माया जैसे पवन चुल्हाया सुन सुन ही डराया कर रो धर्म राया ग्रह अंध कुपाया पावक सगराया।

दैन रहन सास सास गुण गावा ये स्वामी तद पावा नाम तेरा सुख नानक मांगा साहेब तुठे पावा सुही मोहल्ला पांजवा विसरे नाहीं जित तू कबहू सो थान तेरा केहा आठ पहर जत तुद त्याई निर्मल होवे देहा मेरे राम हो सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साध संग तहन सरनाई पाया रहाओ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे एक तिरनी कीमत पाई साधक सिद फिरे बैल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाग थके बिभूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुर नानक ता मन तन हर हर त्याया सुही मुहला पांजवा कर्म धर्म पाखंड जो दिस तिन जम जगाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै संत हो सागर पार उतरिय जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिय रहाओ कोट तीर्थ मजन असनाना कोट तीर्थ मजन इसनाना इस कल में मैल परी जै साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर ली जै वेद कतेव सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त न होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौ वर्ण को सांझा गुरमुख नाम जपै उतरे सो कल मह घट घट नानक माजा सुई मुहला पांजवा जो किश करै सोई प्रभ मानै ओए राम नाम रंग राते तिनकी शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते मेरे राम हर संतां जेवड़ ना कोई भगतां बन आई प्रभ अपने स्यो जल थल महियल सोई रहाओ कोट अपराधी संत संग उदरै जमता कै नेड़ ना आवै जन्म जन्म का विछड़िया होवै तिन हर स्यो आन मिलावै माया मोह भरम पौ काटै संत सरण जो आवै जिहा मनोरथ कर अराधे सो संतन ते पावै जन की महिमा के तक बरनो जो प्रभ अपने पाणे कौ नानक जन सतगुर भेटिया से सब ते पै निकाणे सुही मुहला पांजवा।

जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ, अंधकूप ते काड लिए तुम आप पै कृपाला, सार समल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला, अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छिडाए, अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए, परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा, नानक दया करी सुख दाता भेटिया सत गुर पूरा। सुही मोहल्ला पांजवा, जब कछ न सी ओ तब

मना पाया निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पहाना सुही मोहल्ला पांजवा भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन घर धन हर नामा परवान गणी सी एह आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन के हों बल जाई केसा का कर चवल टलावा चरण धूड़ मुख लाई रहाओ जन मरण दूह मैं नाही जन पर अपकारी आए जी दान दे भगती लायना हर स्यो लैन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे से ती राते सच्चा सुख सच्ची वडियाई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ढोवा हर जन कै पीसन पीस कमावा नानकी प्रभ पास बेनती तेरे जन देखण पावा सुही मोहल्ला पांजवा पार ब्रह्म परमेसर सतगुर आपे करणे हारा चरण तूड़ तेरी सेवक मांगा तेरे दर्शन को बलहारा मेरे राम राये जो राखे त्यो रहिए तद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता लहिए रहाओ मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिह तू आप कराए तहा बिकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाहे सिमर सिमर सिमर

रंग लाए जियो रंगण वाला सेविय सचे सिओ चित लाए जियो रहाओ चारे कुंडा जे पवै बिन भागा तन नाहे जियो अवगण मुठी जे फिरै बद कथाए ना पाहे जियो गुर राखे से उबरे शब्द रते मन माहे जियो चिट्टे जिन

प्रसाद मानस जन्म दलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चले जन्म सवार वखर सच लै पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रता मन मानिया गुर पूरा पाया हो जीवा गुण सार अंतर तू वसै मन माहे सहजे रस रसै मूर्ख मन समझाए आखो के तड़ा गुरमुख हर गुण।

तुझे अरादी जे मार कडे पीते आई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ न जाए जे तुद वल रहे ता कोई केहो आखो तुद विसरे मर जाए वार वार जाई गुर ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा भया दीवाना हर तो दर्शन कहताई चखड़ झागी मीहो वरसै पी गुर देखण जाए समुंद सागर होवे बहु खारा गुर सिख लंघ गुर पै जाए जो प्राणी जल बिन है मरता तू सिख गुर बिन मर जाए जो धरती सोभ करे जल बरखै जो धरती सोभ करे जल बरसै त्यो सिख मिल सिख गुर मिल बिकसाई सेवका होए सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई नानकी बिनंती हर पै गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे तिहाई जो तुद सेवै सो तू है होवै तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस पावे तिस देवाई जे तू दे सोई जन पाए होर ने फल सब चतराए सिमर सिमर सिमर गौर अपना सोया मन जगाई एक दान मंगे नानक बेचारा हर दासन दास कराई जे गुर झिड़के ता मीठा लागै जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोले सो थाए पाए मन मुख किछ थाए ना पाई पाला ककर वर्फ वरसै गुर से गुर देखण जाई सब दिन सरैण देखो प्रभ अपना।

सदा निचल राव रहया स्वपुरख सजाण गुरप्रसादी सेवी है गुरप्रसादी सेवी है सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम गोचर अलख है गुरमुख हर जान श्लोक महला पहला है नानक बदरा मालका पीतर तरिया आण खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावण चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक पाओ लथी नातिया दोए पचड़ी अस होर भारत ती तूमड़ी अंदर बेसन कोर साध पले अनुनात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाइंदा जगत अंदे लाया एक आपे आप लायन गुर ते सुख पाया दैद से मन धाउंदा गुर ठाक रहाया नावे नो सब लोच दी गुरमति पाया तुर लिख्या मेरे न सकिया जो हलिक पाया श्लोक महला पहला दो दीवे चौदह हट नाले जिते चीते ते बनजारे खुले हट हुआ बापार जो पहुंचे सो चलन हार धर्म दलाल पाए निशान नानक नाम लहा परवान कर आए वजी वधाई सच नाम की मिली।

हर संत भगत तारनो हर परपुर रहिया जल थले राम नाम नित गाइए हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसारन हारा गुर भेटिया है मुक्ति दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो राम नाम नाम कर आसा बिच आसा होई निरासी।

हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानकी बेनंती स्वामी। बिलावल महला पांचवा। गुरपुरा वड़भागी पाईए, मिल साधु हर नाम ते आईए, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किल विख काटे पाज गुर के चरना रहाओ, अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उदार, सिमरत सास्त वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तुर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पांचवा। गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्णा सीना, संत जना का

अर्थ आन सब वारिया प्रिया निमक सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोख अर रागो हृदय परगास प्रगट पया निस बासर जागो शरण सुहागन आया जिस मस्तक भागो कहुना।

अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलह क्रोधी। दास रेण सोई होआ जिस मस्तक करमा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सारणा। बिलावल महला पंजवा। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता अंदले त्रिपवन सूजया गुर भेट पुनीता। मेहमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल कोई कोट अघरे निर्मल।

मस्तक अपना भेट दियो गुण सुनो रसाल तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दया दयाल निस्बासर मन आनंद होत चित बित कृपाल रहाओ जगत उदारन साध प्रभ तिन लाग पाल मोको दीजे दान प्रभ संदन पगराल उक्त सियान कछनी नाही कछ काल परम पै राखो मोहते काटो जमजाल बिनो सुनो करो बिनो

कछ ना है परताव तुम्हारा देख कै जमदूत छड़ जाहे तुमरी कृपा ते छूटी है बिन से अहमेव सर्व कला समरथ प्रापूरे गुरदेव रहाव खोजत खोजत खोजिया नामे बिनकूर जीवन सुख सब साध

सब करे कराया, पत तपनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया। मत पूलो मानुख जन माया परमाया, नानक तिस पत राख सी जो प्रभ पहराया। बिलावल महला पंजवा, माटी ते जिन साजया कर दुर्लभ देहे अनक छिद्र मन मैं ठके निर्म।

संतन के आनंद हो नित हर गुण गाय रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन में थापे कीमत कही न जाइए ठाकुर प्रतापे देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सपने का सपना पाया संग चले आ कमाया करण कारण समरथ प्रभ।

दीवान परवार तन प्रभ तेरा नाम कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ संता एक तिहावना दूसर को नाहे एक सागे बेनती रव्या सर्व थाए कथा परा तुन इउ सुनी भगतन की बाणी सगल सदोष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी सत बचन नानक है प्रगट सब माहे प्रभ के सेवक सर

चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगमा पार बस्त कमावत सब सुखी किछ ऊन न दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबे करहे सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बिलावल महला पंजवा हर हर हर अराध्य होइए आरोग राम चंद की लष्टिका जिन मारिया रोग रहाओ गुर पूरा हर जापिए नित कीचै भोग साध संगत कै वारणे मिलिया संजोग जिस सिमरत सुख

चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणाग जन परेता का सद प्रताप, राख राखनहार प्रव आप ताकि निर्मल सेव। राम राज राम दास पुर कीने गुरदेव रहाओ, सदा सदा हर त्याई है किछ बिघ न लागे। नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे, बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ राधी है मिल साध समागे।

नंद नृतक में निंदक मृतक हो गए तुम हो नचेंद्र हाउ सगल मनोरथ प्राप्त किए पेटे गुरुदेव जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव ऊंच अपार अगनत हर सब जी जिस हाथ नानक प्रभ शरणागति जतकत मेरे साथ बिलावल महला पंजवा गुरपुरा राध्या होए कृपाल मार्ग संत बताया टूटे जम जाल दुख भूख संसा मिट गया गावत प्रभ नाम सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ जलन बुझी शीतल पै राखे प्रभ आप नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ प्रताप बिलावल महला पंजवा तरत सहावी सफल थान पूर्ण पै काम पौ नाठा प्रभ मिट गए रविया नित राम साजना के संग बस्त सुख सहज विश्राम साई घड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ प्रगट पै संसार में फिरते पहनाम नानक दे शरणागति घट घट सब जान।

गुरु गोबिंद कृपा करी राख्या मेरा भाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाय रहाओ बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास बिलावल महला पांजमा मर मर जन में जिन बिसरिया जीवन जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया अन दिन रंग राता सांत सहजानंद कना पूर्ण पहियास सुख पाया हर साध जन सिमृत गुणतास रहाओ सुन स्वामी अरदास जन तुम अंतर जामी थान थनंतर अव रहे नानक के स्वामी बिलावल महला पांजवा ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म शरणाई चौगर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटे आज

सुखमनी सोखा सुखी बसा मोर परिवार मोर अच्छा निज कर दया करिए पूर्ण है हमारी आशा।

जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तानारिया नाल चिरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया।

जीवत मरना सब को कहे जीवन मुक्त क्यों होए पैका संजम जे करे दारू पाव लाए अंदन गुण गावे सुख सहजे दिख पव जल नाम तरे नान गुरमुख पाई है जाको नदर करे पौड़ी दूजा पावर चायन त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा बिसन मेह सो पायन हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बुझे बिचारा सब किस तेरा खेल है सच सिरजनहारा जिस पावे तिस बख्श लह सच शब्द समाई स्लोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावे माया नो फिर तपा सदावे परमे फूला सब तीर्थ गह ओह तपा कैसे परम गत लह गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोक अंतर पावे महला तीजा सो तपा जे एहो तप काले सतगुर नु मिले शब्द समाले सतगुर की सेवा एहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी रात दिन सो पायन संसार की वर्तन गुरमति कट चानना आनेर बिनासन हुक्मे ही सब साजियन रबिया सब बन त्रिण सब किछ आप है सब किछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पण सब दे ही सोजी पई सच्चे आप बुझाई स्लोक महला तीजा अभ्यागत एह न आखियन जिनके चित मह परम तिसदै दित्ते नानका ते हो जेहा धर्म अपै निरंजन परम पद ताका भुखा होए तिसका भोजन नानका विरला पाए कोय महला तीजा अभ्यागत एह न आखियन जिन जे पर कर भोजन करे न उदरे कारण अपने बहले पेख करेन अभ्यागत सही नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सहो अपना निज कर रहन करेन पौड़ी अंबर धरत बिछोड़ियन बिच सच्चा सराओ कर दर सबो सच है बिच सच्चा नाओ सब सच्चा हुकुम वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सच्चो सच वरतदा गुरमुख अलखल खाई स्लोक महला तीजा रायणा अर माहे अनंत है कूड़ी आवे जाए पाने चले अपने बहुती लय सजाए

छह ग्रह उदास जन नानक करे कराया सब को ज्यों पावे तिब हर गुण तास पौड़ी छत्ती जुग गवार सा आपे गणत कीनी आपे सृष्ट सब साजियन आप मत दीनी सिमरत सात साजियन पाप पुन गणत गणीनी जिस बजाय सो बुझ सी।

करै जापता बसंजम भीख्या करै पुन दान का करे श्री सोगिरही गंगा का नीर बोले ईसर सत स्वरूप परम तंत मह रेखना रूप महला पहला सोआ तूती जो तुपे आप भिख्या भोजन करे संताप औठ पटन मह भीख्या करे सो अतूती से पर चढ़े बोले गोरख स

मूर्ख का कहना, मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना, मूर्ख ओहे जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाणे सदा दुख दुख ही मैं रहना, अत प्यारा पवे खो है के हो संजम करना, गुरमुख होए सो करे विचार उसाल पितो रहना, हर नाम जपे आप उदरे उस पीछे डुबदे पी तरना, नानक सो तिस पावे।